ओत पोत सेवक संगराता प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता पानी पखा पीसो सेवक कै ठाकर ही काया हर जियो काट सिरक प्रभ सेवा लाया हुक्म साहिब का सेवक मन पाया सोई कमावै जो साहिब पावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकर सब जानै ठाकर के सेवक हर रंग माणै जो किछ ठाकर का सो सेवक का सेवक ठाकर ही संग जाहर जियो अपने ठाकर

से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हम बलतन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे सा संखिन माहे उधारे किल विख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए कर जोड़क बिनों करी जय कर कृपा डुबदा पत्थर ली जय नानक कौ प्रभ पय कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जियो माज महला पंजवा अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख पया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम वखाना जल थल नीर भरे सर सुबर बिरथा कोय ना जाए जियो दया तारी।

वन त्रिण त्रिपावन की तोन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तसै अराधे मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवां तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ता पौ केहा काड़ा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तू मेरी ओट तू है मेरा माणा तुझ बिन दूजा अवर ना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तो दियो पाए जिजत पाणा तित तलाए सब किश कीता तेरा होवै नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया गुरपूरै वजी वाधाई नानक जिता बिखाड़ा जियो। माज महला पंजवां जी प्राण ब्रह्म ने अधारा भगत जीवै गुण गाए अपारा गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवै साध संग जन मरण मिटावै आस मनोरथ पूर्ण होवै भेड़त गुरदर साया जियो। आगम्या गोचर किशमित नहीं जानी साधक सिद्ध ते आवै ज्ञानी खुदी मिट्टी चूका पोलावा गुरमन ही मह प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम वखाना होए किरपाल स्वामी अपना ना ओ नानक घर मैं आया जियो। माज महला पंजवां सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी तू प्रीतम ठाकर अत भारी तुमरे करतब तुम ही जाना हो तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवै कथा सुनत मल सगली खोवै भेटत संग साध संतन कै सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना सास सास सुमारो एह मत गुर प्रसाद मन धारो तुमरी कृपा ते होए परगासा सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत

माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन उठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा घड़कड़ अंतर वरतै नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाण जियो प्रा मृणै की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाण जियो हथी दिती प्रभ देवन हारै जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करतै दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मनों सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपै बुद्ध स्याणप किशु ना जापै अपने संतां नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावै गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच तिहाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा धरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जी वै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वडपागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाणै कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आईऐ सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला घड़ी सुमूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफल थाई।

0: दृष्ट धार अपना दास वारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया। एक स्विण होर दूजा नाही, बाबा नानक हे मत सारी जियो। माज महला पंजवा, मंत्र रत्ता राम प्यारे, सर्बस दीजा अपना वारे। आठ पहर गोविंद गुण गाइय, बिसरना कोई सासा जियो। सोई साजन मीत प्यारा, राम नाम सा संग बिचारा। साधु संग तरी जय सागरो, कटिया जमकी फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप लाखा पेवा। काम क्रोध किरव गुर काटे, पूर्ण होई आसा जियो। पूर्ण भाग पए जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पाणी। नानक नाम वस्या जिस अंतर, प्रमाण ग्रस्तो दासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया। कर कृपा भगती प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपया। बिनसे आलस रोगा जियो। जा कै ग्रह नव निधार भाई, तिस मिलिया जिस पुरब कमाई। ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। खिन मैं थापो थप नहारा, आपे कंती आप सारा। लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लहन में जोगा जियो। अंचल लाए सब श्रेष्ठ तराई, अपना नाओ आप जपाई। गुरबोहित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए। जिथे रखे सा भली जाए, सोई सियाणा सो पतवंता। हुक्म लगे जिस मीठा जियो, सब परोई इकत धागै। जिस लाए लए सो चरणी लागै। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तन सर्ब निरंजन डीठा जियो। तेरी महिमा तू है जाणै, अपना आप तू आप पछाणै। हम बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लो पीठा जियो। तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, जिन देखे सब उतरै कलमल। नानक नाम त्याय त्याय जीवै, बिनस्या परंपो तीठा जियो। माज महला पंजवा, झूठा मंगण जे कोई मांगै। तिसको मरते कड़ी न लागै, पार ब्रह्म जो सदी सेवै। सो गुरमिल ने चल कहना, प्रेम भगत जिसकै मन लागी। गुण गावै अंध न जागी, बाहां पकड़ो ते स्वामी मिलै। जिसकै मस्तक लैणा, चरण कमल भगता मन मुठे। विण परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ। नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाई है। जिस मृतवार ने चल पाई है, नानक प्रभ हो दयाला। तेरा कीता सहना, राग माज अष्टपदियां महला पहला। कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगह महल बुलाए। सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा, सच्चे मन पति आवणिया। हाँ वारी जियो वारी, शब्द सुहावणिया। अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमती मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा, हों किसकेरा। साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा। हों मैं कर कर जाए कनेरी, कर अवगण पछो तावणिया। हुक्म पछाणै सो हर गुण वखाणै। गुर कै शब्द नाम निशाणै, सबना कादर लेखा सच्चै।
1: Take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app. Download the app for free in your app store today. Search iHeartRadio.
2: Magandang araw po!
3: Hello, Winnipeg!
4: Mabuhay, Winnipeg!
5: Magandang araw, Winnipeg!
4: Mabuhay at magandang umaga, Winnipeg!
6: Magandang umaga! Kumusta ka? Okay lang, ikaw!
7: Narito na!
8: Good morning, Philippines!
9: Good morning, Philippines!
10: Good morning, Philippines!
11: Good morning, Philippines!
12: Pagtangkilik sa ating mga OPM, awiting Pilipino,
13: palagi ang mapapakinggan dito lamang po sa CKJS.
14: Your Filipino radio station in Winnipeg.
15: Mabuhay! Mabuhay ang mga awiting Pilipino!
16: Mabuhay!